सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा कर कर बाबा गावी है वज्जल ताल मृदंग बाबा

माधोरी सत्संग मिले सो तरिया, सत्संग मिले सो दरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत।

की पवित्र बाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारियां सलोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, यह मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगती, जांदियां भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बता दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसका नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण यह 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां। ऐ पलिया, तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्यवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़िआं विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है उह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधिए जे रहना होवे, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिआं, बई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ

पोहम पातुक बिना से गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा से गुर अमरदास

गुरमुख जापे। जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापे। आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे। आप अभुल न भुलई प्यारा दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा धुन आप वजाए आपे। आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तपतापे।

आपे धरती आप है रात आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहू महादान होय के मांगो धन देत हो, कहू

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद और दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण शाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

आप सब लोग सुखी बसो। इस जोगी राज ने ए गल कही ते तन गुरु नानक साहब कहन लगे, जोगी राज तुसी की किया सानू समझ नहीं आई, एक बारी फेर कहो। अज तक किसे ने ए सवाल नहीं सी कीता। गुरु साहबा नू घूर के देखिया ते जोगी राज कहंदा है, ए बालके ये ज्ञान ध्यान की बातें हैं, तुम नहीं जान सकते। गुरु साहब जी कहन लगे, असी जान नहीं सके, ऐसे वास्ते ता पूछिए। ते जोगी राज कहन लगा, ऐ बालके मैं इन लोगों को तीनों लोकों की बातें बता रहा हूं, तीनों लोकों में क्या हो रहा है मुझे तीनों लोकों की सोझी है कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। तो गुरु साहब जी कहने लगे, अच्छा चंगा फिर जोगी राज जरा ए दसो, तिना लोकां दा ज्ञान तां तुहानू है, तुहाडे सामने जड़ी माया वाली संदूकड़ी सी ओ किथे है। जोगी राज ने सामने देखिया ते संदूकड़ी कोई नहीं, जिन्ने लोकी बैठे सन ओ सारे हस पए। ते गुरु साहब जी कहन लगे, भाई तेरी संदूकड़ी किथे। ते जोगी राज कहंदा है, गुरु साहबा नू बताओ मेरी संदूकड़ी कहां है। ते गुरु साहब जी हस

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है कि मैं

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई, तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान दा एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटिया दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां, गला विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान करदे।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिटे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया,

इस पेखी संत दे कोल ए तनी आदमी बैठ गए, गल्ला बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वां

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने चलो पैना बड़े वड्डे संत महापुरश आए ने जेड़े एक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन कर दे ओ सारियां मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नु संत समझ के पर बगला जिहड़ा है एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदियां ने संत समझ के ते ओदों ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नूं मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है। भगत जी कहंदे ने इह संत भी ओहो जिहे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नूं लुट पुट के खा जा

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तो आड़ा मन नहीं जुड़ता ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

0: मन क्यों डोलद? मन के डोलन का कारण की है? क्योंकि मन का कोई आसरा नहीं, मन का कोई सहारा नहीं। सहत उपदेश देंदे यह गल समझ आ रहे ने, सतगुर संग ना ही मन डोल। जे मन नूं यह यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन नहीं डोल। फिर मन नूं एक दलासा है, मन नूं एक भरोसा है कि गुरु मेरे नाल है। पढ़ते तो आप जरूर हां गुरु मेरे संग सदा है नाले, पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। जे भरोसा हो जाए तो वाकई मन डोलदा नहीं। पर सतगुरु ने ख्याल दिता है कि मन के डोलन के कुछ कारण हैं, कि मन क्यों डोल जाता है। चार कारण कुछ सियाणिया ने गिण के दसी। इस मन नूं डर है चार प्रकार का, जिस कारण यह मन डोल जाता है। वो केड़ा है? पहला सरकार दा, ते दूसरा है समाज दा, तीसरा है रोजी दा, चौथा है मौत दा। ये चार प्रकार दा डर मन्निया गया। हुण जी इना तो बच जाए मन नूं, ये निश्चय यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन डोलदा नहीं। इना चारियां दी गल सतगुरु ने बाणी विच कही है कि सरकार का डर कैसा है जे मन नूं यकीन होवे।
1: सच्चे दी सरकार जुग जुग जानी है।
0: इस मन अंदर कोई डर होवे ते केवल सच्चे वाहिगुरु दा हो, किसे होर दी लोड़ नहीं। ते वो सच्चे दी सरकार जो जुगो जुगंतर तो चली आ रही इको जी है, उहदे विच कोई डर नहीं। दूसरी गल समाज दी। समाज तो मनुख बड़ा डरता है। समाज की आखेगा? बाणी का फैसला।